इस गल दी सी कि मियां दी नक नहीं सी कटी गई। उस नूं मियां दी इज्जत जान दा बड़ा दुख सी। हरामी होना किन्ने मौके ते काम आया। रब ना करे जे ओह किसे दी जायज औलाद हुंदी तां छुट्टी हो ही जांदी। रामू दी दादी दे घर दे विच उस दा दम घुट रिहा सी ते जिंदगी दे विच कदी इंज घर दी मालकन बन के बैठण दा मौका नहीं सी मिलिया। उस नूं घर दी फिकर लग गई हुई सी ते चोरी चकारी दे डर नाल मियां ने इन्ने दिनां दी झाड़ू भी नहीं सी दवाई सी। कूड़े दे ढेर लग गए होणगे। ओह स्टोर जा रहे सन ते लाजो ने रस्ता रोक लिया। फिर मियां कल तो काम ते आ जावां मैं, ओह ठुड़की फिर लाहौल वाला कुवत। मियां सिर झुका के लम्मियां लम्मियां पुलांगां जिहड़ा सी पुट दे निकल गए। दिल दे विच सोचिया इस दे मन दे विच कोई गल जरूर है। बदकार ही सी पर पिछले मामले तां सारे निबड़ ही गए ने। लाजो ने कल दी उड़ीक नहीं कीती। छत्तो छत हुंदी होई वेड़े दे विच जा छाल मारी, लहंगे दा लंगोट बनाया ते जुट गई। शामी मिर्जा वापस आए तां लग्गिया जिवें मोई होई अम्मा भी वापस आ गई होवे। फिर घर साफ सी, चंदन वांग धूफ दी निम्मी निम्मी खुशबू, कोरे मटके उत्ते लिश लिश करदा मांजिया होया कटोरा, गच भरिया भर आया। चुप चाप भुन्या होया मीट ते गर्मा गर्म रोटियां खांदे रहे। लाजो अपनी हैसियत दे मुताबक दहलीज दे उत्ते बैठी पखा झलदी रही। राती जदों रसोई दे विचों वापस आई ते दो टाट जोड़ के लेट गई तां मिर्जा नूं फिर डाढ़ी प्याज दा दौरा पै गया। मन मार के पे उसदे कड़िया दी छनकार सुणदे ते पासे परतदे रहे। दिल दे विच डर सी कि बड़ी बेकदरी कीती सी उना उसदी। लाहौल वाला कवत। अचानक उस बड़बड़ाउंदे होए उठे ते टाट दे उत्ते पई घरवाली नूं समेट लिया। जी दोस्तो, ए सी कहानी इसमत चुगताई हुना दी कलम दे विचों घरवाली, जिसनू पंजाबी दे विच अनुवाद कीता है महिंदर बेदी जैतो जी ने, ते मैं तुहाडा दोस्त भुपिंदर भारज ते दुआबा रेडियो दा मंच। उम्मीद करदे आं कहानी दे विचों बहुत कुछ सिखण नू मिलिया होवेगा। ते लो दोस्तो, इस दे नाल ही फिर आपां इस कहानी नू इत्थे समाप्त करदे आं ते कल नू फिर कोई ना कोई नवी कहानी पावांगे ते कल नू ना किताब दी भी गल करांगे, ना किताब पंजाब दी अगला चैप्टर तुहाडे लई खोलांगे। ते जांदे जांदे कुछ सुनेहे आए ने ते उहदे विच जगतार भारत जी ने सत श्री अकाल भेजी है। मुकद्दर जी कहिंदे सत श्री अकाल प्यारिओ। ते बाकी जे किसे दा सुनेहा रह गया वे माफी चाहवांगा। कल नूं मिलण दे वादे दे नाल मुलाकात होएगी। ते बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तां दा प्रोग्राम दे नाल जुड़न दे लई, सुणन लई, देखण लई। ते कल नूं मिलण दे वादे दे नाल मुलाकात होएगी। सत श्री अकाल दोस्तो, इस दे नाल जी मिलदे आपां कल नूं 9:30 बजे भारतीय समें दे अनुसार। सत श्री अकाल।

Basta. जावे ले जा सुख सुनेहा मेरे सोने यारां दा, उस दे सिर तों सजदा वारी मेरे गूड़े प्यारां दा। जावे ले जा सुख सुनेहा मेरे सोने यारां दा, उस दे सिर तों सजदा वारी मेरे गूड़े प्यारां दा। जा

जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, वो रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ता ही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, शरण जीत प्रेम हुण विकदा ए, शरण जीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए।

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच लई अड़ना सिखो न अंदर वह के जरना चंगा, नाल अणख दे जीवन दे लई न ईन किसे दी परना चंगा। रल मिल के रहना सबने दुख सुख बिच।

खुले फिरदिया शेर सुते नी तू रोक नी सकदी जस बयान पुरचा पुरचा ए कट मरे लड़े दीन के हेत अन्नदाता कहां दे चक दे दिन रात लंगाऊं देखेत क्यों वैर कमावे मुट तो तेनू रता शर्म ना आई तेथों कुछ लेना ना तेथों कुछ लेना ना साटी बहुत है किरत कमाई चौरासी दोहराई ना चौरासी दोहरावी ना तेनू देंगे जड़ों उखाड़ खैर मना ले दिल्ली ए नी आगे सज के सिंह सरदार खैर मना ले दिल्ली ए नी आगे सज के सिंह सरदार मजलूमा दिया हक्का लई जो अड़दे ने थां थां ए गोविंद सिंह दिया बख्शा ने जिउण दे आशक नी जो पहला भी खंगे सी कई टंगे शासक नी अख पर के वेखी ना अख पर के वेखी ना कले चा रख देंगे बार दिलिये खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार दिलिये खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार असी बाल अथरे हाँ साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता असी बाल अथरे हाँ साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था सदके मुड

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बसे ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

अगे पूछ हलौंदा ए लख सच्चा होवे बिन पैसे बस उसनू थल्ले लौंदा ए कैड़े ओ भी बसण पदौड़ सदा चिकके ओ भी बसण पदौड़ सदा जिन्हां रखियां सोचां उच्चियां ने या

मैं सदा तेरे रादार उड़ा रहा नी, निकल गया रादार उड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादार उड़ा रहा नी, निकल गया रादार उड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

0: दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत कर दे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे कुलवंत सिंह सैदो जी दी कविता जिंदगी असीं मजदूर तेरे सुन के हटे हो, ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसीं पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसी नूं दिल तो ही जा सकता है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकता है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकता, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। पलिकानू हंजुआ दे नल पिगोया करेंगी तू। करी करके मैनू याद, रोया करेंगी तू। हाय करी करके मैनू याद, बदलां दे विच बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू याद आएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू याद आएगा। किद्दां हिजर दे दाग, किद्दां हिजर दे दाग, तोया करेंगी तू। करी करके मैनू याद,